और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें।

0: और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं।
1: वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफइन मित्त फहुमुल खालिदून।
0: और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे।
1: कुल

0: हूँ।
1: क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमसे पनाह ही दिए जाएंगे।
0: बल मत्ताना हाउलाए वआबाहुम हत्ता ताला

और देवों की जमात को भी उनके ताबे कर दिया था कि उनमें से बाज उनके लिए गोते मारते थे और उसके सिवा और काम भी करते थे और हम उनके निगहबान थे।

0: तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है।
1: वो इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ्ल कुल्लु मिन अस्साबिरीन।
0: और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल किफ्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे।
1: वो अदखल

0: जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा।
1: या अय्युहन नास इन कुंतुम फी गैब मिन अलबअथ फइन्ना खलकनाकुम फइन्ना

0: क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि उनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते हैं।
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते

0: हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ke din mein.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया और प्रोग्राम जावेद आज जिंदगी के साथ अली अजबत फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमने अब एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन सर से करना था,

0: सर मुझे ये बताइए कि मार्केट में लोग जो है बड़ी हंसी खुशी जो है यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके अच्छे ग्रेड्स के साथ अच्छे नंबर्स के साथ निकल जाते हैं मार्केट में, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो जॉब ही नहीं मिलती, तो इसके पीछे क्या रीजन है?
1: अब देखो ये वो हमारी बदकिस्मती और बदबख्ती है अजवत कि एक बच्चा जिसके लिए उसके वालिदैन ने ख्वाब देख रखे थे कि मेरा बच्चा ये पढ़ेगा लिखेगा और मार्केट के अंदर एक बाइज्जत जिंदगी गुजारेगा, अब वो बच्चे ने उस वालिदैन ने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी उसकी तालीम पे लगा दी और उस तालिब इल्म ने अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन वक्त था वो यूनिवर्सिटी में गुजार दिया, उतने पैसे लगाने के बाद और इतना सारा वक्त स्पेंड करने के बाद वो मार्केट में जाता है और मार्केट के अंदर जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे जॉब नहीं है और वो लोग वहाँ पे उस तरीके से उसको वेलकम नहीं किया जा रहा जो वो एक्सपेक्ट करके वहाँ पे आया था, तो इसकी अब वजूहत क्या हैं? सबसे पहली बच्चे वजह तो ये जो मैंने हम पहले भी ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि हमारे तालिब इल्मों का जो फोकस होता है उनकी शख्सियत को डिग्री बनाना बेसिकली मकसद होना चाहिए कि मुझे अपनी तालीम को साबित करने के लिए अपना किसी को CGPA ना दिखाना पड़े कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरी शख्सियत को बोलना चाहिए कि मैंने जिंदगी के अंदर इतना मैं कामयाब इंसान हूं और मैं एक क्लास और ग्रूम्ड पर्सनैलिटी हूं। एक बड़ी अच्छी किताब है 21st Lesson for the 21st Century, 21वीं सदी के 21 इम्पोर्टेंट सबक, इंतहाई खूबसूरत ये किताब लिखी हुई है और उस किताब के अंदर पढ़ते हुए जब मेरा ध्यान एक बड़ी जगह पे गया कि जो आने वाले 10 सालों के बाद जो जॉब्स हैं उन जॉब्स के अंदर जो डिग्री का क्राइटेरिया वो खत्म हो रहा है।
0: अच्छा।
1: क्राइटेरिया डिग्री नहीं होगा कि ये जॉब के लिए आपके पास ये डिग्री होगी तो आप ये काम करोगे, आपके पास वो सलाहियत होगी तो आपको जॉब मिलेगी, बात समझ रहे हो आप?
0: सही बात।
1: गूगल के अंदर भी इस वक्त इस तरह की अब जॉब्स हो रही हैं कि जहां पे कोई आपने MS IT करके या BS IT करके आप उस तरफ नहीं जा रहे हो, वो कहते हैं कि भाई आपके पास सलाहियत है, ये एक प्रोजेक्ट है छोटा सा करके दिखाओ, आप करके दिखाते हो आपको जॉब मिल जाती
0: अगर
1: है।
0: अगर आप वो प्रोजेक्ट
1: एक
0: कर लेते
1: बच्चा
0: हो,
1: आता है तो उसके पास डिग्री है 4 CGPA है लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको कर पाए तो वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं।
0: जितना मर्जी है GPA को नहीं देखा जाएगा, सलाहियत को
1: बिल्कुल। मार्केट जो चीज मांगती है वो बच्चे प्रोफेशनलिज्म मांगती है, वो डिसिप्लिन मांगती है जिसके ऊपर हमने कुछ शोज भी किए थे, वो टाइम मैनेजमेंट मांगती है आपसे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करती है स्टूडेंट से। जब उन्होंने बच्चों को इन्वेस्ट करना है बच्चों के ऊपर, उनको सैलरीज देनी है, तो उन्होंने उन बच्चों की उन सलाहियतों को यूटिलाइज करके अपने अदारे को भी ऊपर लेके जाना है। तो अब ये हमारे बच्चों की फोकस लाइन ये होनी चाहिए कि अगर मैं यहां से 4 साल गुजार रहा हूं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे वालदैन इतने पैसे भी इसके ऊपर सर्व कर रहे हैं, दिन रात मैं यहां पे मेहनत भी कर रहा हूं और इतनी सारी मेहनत या 4 साल गुजारने के बावजूद अगर मैं इस काबिल नहीं हुआ हूं तो इसमें कहीं पे भी कसूर यूनिवर्सिटीज या टीचर के ऊपर जब आप डाल देते हो, यूनिवर्सिटीज पे डाल देते हो, अदारों पे डाल देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गलती को रियलाइज ही नहीं किया कि जो पढ़ने वाले थे वो तो टाट एंड टाली स्कूल से पढ़ के भी कहां के कहां पहुंच जाते हैं और आपको इतनी आला पाए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला हुआ हो, आपकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आपकी एजुकेशन हो, हाई क्वालिफाइड टीचर्स भी आपको पढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है उन टीचर से सीखना और उसको सीख के अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना तो ना हो, सिर्फ नंबर लेना हो, यहाँ पे आके हमारे बच्चों के साथ मसला हो जाता है।
0: सर यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो राइज होता है आपकी बात से, मैं बात मिलाता चलूं। देखें पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं किरदार आता है और देखें इंटरेस्ट मैटर्स, ये बात एक पंच लाइन है कि इंटरेस्ट मैटर करता है और हम मतलब हमारे जितने भी हमारे मुल्क में जितने भी वालिदैन है वो क्या करते हैं, वो बच्चे को कहते हैं कि यार इस डिग्री में स्कोप है, आपने यही डिग्री करनी है और इसके अलावा आपने कोई डिग्री नहीं करनी। वो ये नहीं देखते कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, इंस्टेड ऑफ के वो उससे पूछे कि बेटा आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो कहते हैं कि यार तुमने यही डिग्री करनी है, इसका ही स्कोप है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो प्रॉब्लम है ना, ग्रेड्स के साथ इस चीज का भी रिलेशनशिप तो बनता है ना।
1: बिल्कुल,
0: लोग फिर यूज करते,
1: ये वही बात हो गई कि मेरे पास एक बहुत अच्छा वेपन है किसी चीज को काटने का और वो बड़ी आसानी से मैं काट सकता था, लेकिन मेरे वालदैन ने कहा कि आप ये चीज लो और इससे आप इसको काटो, मतलब जो मेरे में सलाहियत थी उसको नहीं देखा गया, उसको आपने सैक्रिफाइस कर दिया और आप उसके ऊपर एक चीज को थोप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब आपने यही करना है, जब आपका वो बिलीफ, वो सलाहियत जिसके लिए आप पैदा किए गए हो और वो डिग्री जो आप करने जा रहे हो उनमें जब मुताबकत नहीं होगी तो क्लैश होता है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो, जो शौक जब कारफरमा होता है तभी आप चीजों को सीखते हैं। शौक एक बच्चे में क्रिकेटर बनने का है, वो गलियों में खेलता है,
0: बिल्कुल ऐसे
1: उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती फैमिली कि तुम फलां क्लब में चले जाओ, फलां जगह जाकर क्रिकेट खेलना सीखो। वो गली से खेलता है, गलियों में खेलते हुए आगे बढ़ता है, करते करते वो टीम का हिस्सा बन जाता है सारा कुछ। उसको किसी ने गाइड नहीं किया, वो शौक था। तो जब आप किसी बच्चे को उस डिग्री की तरफ लेके जाओगे जो उसका शौक नहीं है, तो जबरदस्ती जब वो करेगा नंबर भी आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जो आपने बात स्कोप की, स्कोप कभी भी डिग्री में नहीं होता है,
0: टैलेंट
1: स्कोप इंसान में होता है। एक फारसी जिसको बड़ा निग्लेक्टेड सब्जेक्ट कहा जाता है, अगर आपने फारसी के अंदर भी आप एक्सेल कर गए हो और आपसे अच्छी फारसी कोई बोलता या लिखता नहीं है, तो आपके लिए भी फॉरेन ऑफिस के अंदर ट्रांसलेटर की जॉब मौजूद है। कि आप जो पर्शियन कंट्री से ममालिक यहाँ पे आते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री जो पाकिस्तान में विजिट करते हैं, आप उनके लिए ट्रांसलेशन, प्रेस रिलीज लिखने का काम या दीगर जो शोभा जात है वहां पे आप एडजस्ट हो सकते हो। लेकिन यू हैव टू बी बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। हमारे बच्चों का मकसद मतलब ये होता है कि हम उस डिग्री की तरफ जाएं जिसका स्कोप है, ये नहीं देखना कि मेरी अपनी शख्सियत का स्कोप क्या है। तो स्कोप ओरिएंटेशन कोई चीज नहीं होती है, स्कोप हमेशा इंसान के अपने अंदर होता है।
0: सर बल्कि मैं यहाँ पे आपकी बात में एक और एग्जांपल जरा थोड़ी सी आपको बता दूं कि मेरा एक दोस्त था, उसके पास मैं गया कि वो इतनी अच्छी सैलरी नहीं ले रहा था, लेकिन द थिंग वाज दैट कि उसके पास मैं गया, मैंने कहा यार तुम तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं ले रहे लेकिन तुम फिर भी बड़े खुश हो, बड़े हैप्पी हो। वो कहता है कि असल में बात यह है कि मैंने वो डिग्री की है जो मेरा पैशन था, जो मेरा शौक था, तो इसमें मुझे लॉस भी होगा या मुझे इसमें प्रॉफिट भी होगा, तो वो मैं उन दोनों चीजों पे हैप्पी होऊंगा क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरा हुनर था, जो मेरी सलाहियत थी।
1: अब ये है बुनियादी तौर पर मतमईन नजर एजुकेशन का। तालीम इसलिए होती है कि आपके अंदर से वो चीज खंगाल दे जो आपको सेटिस्फाई करे। हम जिंदगी में जितनी मुशक्कत करते हैं, जितनी जद्दोजहद करते हैं, जितने एग्जाम्स देते हैं हम, जितनी नौकरियां करते हैं, उन सब का मतमईन नजर एक होता है और वो होता है इत्मीनान कल्ब कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मैं मुतमिन हो जाऊं। लिहाजा उस इत्मीनान के हसूल के लिए हम सबको जिंदगी में कर रहे हैं। अगर मैं कमा तो 2-3 लाख रहा हूं लेकिन मुझे इत्मीनान ही नहीं है, उदासियों में घिरा हुआ हूं। और कितने मैंने पढ़े लिखे लोग और इंतहाई कामयाब लोगों को खुदकुशी करते देखते हैं हम, अखबारात के अंदर ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि अब अगर कामयाबी का हसूल सिर्फ पैसा ही होता तो पैसा तो उनके पास बहुत था,
0: बिल्कुल
1: कामयाब भी थे, जॉब भी थी, लेकिन जो चीज नहीं थी
0: नहीं
1: वो इत्मीनान था, वो सेटिस्फेक्शन थी। तो जो सेटिस्फेक्शन है बुनियादी तौर पर, जब आपका जो हुसूल है जिंदगी के अंदर वो सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने जिंदगी के अंदर उस तरफ जाना है जो मुझे मुतमिन करे, जो मुझे खुश करे, बजाय इसके कि मैं वो काम करूं कि जो करते हुए तो मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहता हूं। अगर 8 घंटे की मेरी जॉब है और 8 घंटों के अंदर मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन नहीं है, मेरे लिए डिप्रेशन बन चुका है, तो फिर मैं डिप्रेस होने के 2 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब आप पैसे लेकर अपने आप को एक बीमारी की तरफ लेके जा रहे हो। तो ये हमें अब बहुत अच्छी ये बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों में ये रियलाइजेशन आ रही है। मैं रोज जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों में बहुत सारी बात करते हुए ये चीज सामने आती है कि हमारे जो बच्चे हैं अब उस ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ पे वो इम्पोज्ड प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बाज़ुकात इम्पोज्ड प्रोफेशन को चैलेंज करते हुए खुद से एक प्रोफेशन की ख्वाहिश करते हैं कि यहाँ पे मैं मुतमिन हूँ, ये काम मैंने करना है और यहाँ पे जाके असल में पैसा भी कमा लूंगा, कामयाब भी हो जाऊंगा और खुशी भी मुझे हासिल होगी।
0: बल्कि सर जैसे हम रोड पे अक्सर जाते हैं तो 2 फैमिलीज जा रही हैं, लेट्स सपोज एक फैमिली जो है वो बड़ी ही लग्जरी गाड़ी में जा रही है, एक जो है वो एक मोटर बाइक पे जा रही है, और बाज़ुकात ऐसे होता है कि लग्जरी गाड़ी में जाने वाली फैमिली जो है वो इतनी हैप्पी नहीं होती, अनहैप्पी होती है, सैडनेस होती है, लेकिन जो वो फैमिली सेटिस्फाइड है, अपने सेटिस्फाइड की बात की है ना, जो मोटर बाइक पे जा रही है वो सेटिस्फाइड जा रही है। तो जिंदगी में बेशक जो सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है और उसका ताल्लुक जो है वो तालीम से भी है कि अगर आप वो डिग्री का इंतखाब करते हो, उस डिग्री का इंतखाब करते हो जो कि आपका पैशन था, जो कि आपकी स्किल थी, जो कि आपका हुनर था, तो डेफिनेटली जो कामयाबी आपकी कदम चूमती है और आप सेटिस्फाई रहते हो। तो ब्रेक हमें फिर एक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद हम डोंट गिव अप थ्योरी के बारे में इंशाल्लाह सर से बात करेंगे। तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, प्रोग्राम जावेदा जिंदगी। मैं एक बार फिर अली अजवद आपकी खिदमत में हाजिर है। सर इरफान अली फानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। और सर, अब डोंट गिव अप के ऊपर मैंने बात की थी। एक देखें, जिंदगी में एक एलिमेंट पाया जाता है कि इंसान अपने आप को मोटिवेट करता रहता है, अपने आप से गुफ्तगू करता है, अपने आप से बात करता है कि डोंट गिव अप, कि हार नहीं माननी। लेकिन सर, एक वक्त ऐसा भी आता कि इंसान उस वक्त कुछ नहीं उसको नजर आता और फिर वो डोंट गिव अप का फैक्टर जो है उससे दूर दूर दूर भागता चला जाता है और वो एक हॉल में कैद हो जाता है। इस कैफियत को क्या कहेंगे और इससे निकलने का तरीका भी बता दें।
2: जबरदस्त आपका सवाल, तो बहुत जानदार किस्म का है कि हम हर रोज ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि यार जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस काम के पीछे लग जाओ तब तक आप उसको करते जाओ तब तक वो आप कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। और इस तरह के बहुत सारी मोटिवेशनल कोर्स भी हम पढ़ते हैं जो हमें ये कहते हैं कि डोंट गिव अप। अब हमने ये देखना है कि जिस काम हम कर रहे हैं, इसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि मैं एक दीवार पे एक कील ठोंकने की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं हथौड़ी लेता हूँ और एक कील लेता हूँ, और मैं एक जगह पे कील लगाया और मैं शुरू हो जाता हूँ हथौड़ी से उसको नॉक करना कि ये दीवार पे मैं इसको ठोंकना चाह रहा हूँ। अब आगे कोई लोहे की सलाख आ गई, ठीक है, अब मैं अगर इस थ्योरी पे चलना शुरू हो जाऊं कि मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने इसी लोहे पे ही सुराख करना है, तो आप बेशक एक दिन, दो दिन, चार दिन, पूरी जिंदगी लगे रहें,
1: सही,
2: कील टेढ़े होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, हथौड़ी भी खराब हो सकती है, लेकिन लोहे के अंदर आप लोहे को गुजार नहीं सकते। आप ये देखना है कि आप जिस काम को कह रहे हो कि मैंने गिव अप नहीं करना, क्या उस काम की नोयत ऐसी है कि आप एक गलत ट्रैक के ऊपर आपको आज मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्या आपकी डायरेक्शन ठीक है जिस डायरेक्शन पे आप जाके कह रहे हो कि मैं गिव अप। हाँ, अगर उसी कील को मैं वहां से ना उखेड़ू और किसी निचली जगह पे जाके दोबारा से ठोंकना शुरू करूं और वहां पे वो रास्ता भी बन जाए और कील भी जो है वो ठोंका जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब जिंदगी के अंदर आपने एक दफा काम किया, दो दफा काम किया, चार दफा काम किया, आपसे वो काम नहीं हुआ और नहीं हो रहा, तो वहां से काम तो आपने वही करना है लेकिन हमें थोड़ी सी डायरेक्शन को तब्दील करना, हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं पे कोई बुनियादी गलती तो नहीं है जिसकी वजह से मैं बार बार नाकाम हो रहा हूँ, किसी मैं लोहे के अंदर तो सुराख नहीं कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना बात की?
1: बिल्कुल।
2: तो लिहाजा हमने उस जगह को बदल दिया एक नई जगह के साथ और वहां पे जो हमारी पहली या दूसरी एफर्ट के अंदर ही हम कामयाब हो जाते हैं।
1: अच्छा, देखिए, आपने कहा है कि अपने आप को बताना पड़ता है,
2: हाँ
1: ठीक है, अपने आप को मतलब इसका मतलब कुछ यूं ही हुआ कि मोटिवेट करना पड़ता है, ऐसा क्या फैक्टर है? मतलब अपने आप को, इंसान है हम,
2: हाँ,
1: तो डेडिकेशन को जगाने के लिए या डेडिकेट रहने के लिए ऐसा कोई अमल तो होगा ना जो हम करें, या अपने आप को किस तरह हम मोटिवेट रख सकते हैं?
2: देखो, मोटिवेशन इटसेल्फ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम दुआ भी मांगते हैं ना, तो दुआ इटसेल्फ एक डिवोशन और डेडिकेशन का नाम है।
1: सही।
2: क्या मैं उन तमाम तकाजों और मुतालबों को पूरा करके दुआ मांग रहा हूं जो मुझे करने चाहिए? नंबर एक, कि मुझे कामयाबी होने के लिए तो जरूरी है कि मैं दिन रात पढ़ूं, ठीक है, रिसर्च करूं, रिसर्च करने के बाद मेरा पेपर होगा जो डिटरमिन करेगा कि मैं कामयाब हुआ हूं कि नाकाम हुआ हूं। पढ़ तो मैं रहा नहीं, क्लासेस में भी मैं टाइमली नहीं जा रहा हूं, और क्लासेस में अगर मैं बैठता भी हूं तो वहां पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं, और फिर मैं कहूं कि मैं दुआ कर रहा हूं कि मैं कामयाब हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि जिसको आप डिवोशन कह रहे हैं, डेडिकेशन कह रहे हैं, वो आप बिल्कुल गलत उसको डिफाइन कर रहे हैं। डिवोशन अपने वजूद के अंदर मुसलसल प्रैक्टिस का नाम है। ये वाइब्स होती हैं। आप नेगेटिविटी के बारे में सोचना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी में सब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड फ्रेम है वो वाइब की शक्ल में उन तमाम नेगेटिव इश्यूज को जाके कैप्चर कर लेता है, क्योंकि आपका जहन सोच ही वो रहा है। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो और हमेशा अपनी मंजिल अपने गोल को सामने रखते हुए सोचते हो कि अच्छा इस रास्ते पे मैं जाके मैं यहाँ तक पहुँचना है, अच्छा अगर ये ना हुआ तो इस ऑप्शन फिर ये ऑप्शन है, इस रास्ते पे चल के मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूंगा। वो पॉजिटिव वाइब्स उन तमाम पॉजिटिव सोर्सेज तक आपको ले जाएंगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे।
1: सर ये आपने भी बड़ी जबरदस्त बात की है कि जिस तरह नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स,
2: और पॉजिटिव वाइब्स तब आती हैं जो इंसान खुशबख्ती की तरफ जब चला जाता है।
1: सर मैं खुशबख्ती की तरफ भी आता हूँ लेकिन मुझे उसके अलावा आपने ये भी बताना है कि पॉजिटिविटी, देखे मैंने इस चीज को खुद सर एक्सपीरियंस किया है, जब एक काम हो रहा था, मतलब जस्ट सपोज एक काम हो रहा है, मैंने उसको पॉजिटिव लिया,
2: ठीक है,
1: मैंने सोचा कि अच्छा होगा,
2: हाँ।
1: तो वाकई अच्छा हो गया,
2: हाँ।
1: और उसके कंपैरिजन में एक काम में मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने कहा यार ऐसे नहीं होगा, नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई कि यार मेरा कोई मसला ना हो जाए तो प्रॉब्लम में ना मैं पड़ जाऊं, तो सर वाकई प्रॉब्लम में पड़
2: गई।
1: तो सर ये मतलब इसके पीछे कोई साइंसी चीज है या क्या?
2: साइकोलॉजिकल वाइब्स है ये पूरा जो एक सी एक साइंस है जो कि न्यूरोलॉजी और जो हमारी नफ्सियात का हमारी खारजी जिंदगी के साथ जो ताल्लुक है उसको जो डिफाइन करती है,
1: हाँ,
2: कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारे जो मुस्बत सोचे हैं,
1: हाँ,
2: जिंदगी के अंदर जो डिवोटेड सोचे हैं वो डिटरमिन करेंगी कि हमारे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा।
1: हाँ।
2: एक पहाड़ में चढ़ने से पहले मैं कह दूं यार कहीं रास्ते में तूफान ना आ जाए मैं तो गिर जाऊंगा, वहीं से ही आपने अपने आप को डिमोरलाइज कर लिया। एक बात कि आप मैं नाकाम हो जाऊंगा तो क्या होगा, इसको सोचने से कितना बेहतर है कि आप ये सोचो कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो क्या होगा। ये वो चीज है जो आपका मोरल हाई रखेगी,
1: सेल्फ मोटिवेशन,
2: यस, ये वो चीज है जो आपको मोटिवेटेड रखेगी। और दुआ का जो एलिमेंट है और वो भी तब कारगर साबित होती है, दुआ भी आपके वक्तों को जगाने में या आपको खुशबख्त बनाने में तब कार फरमा होती है जब आपकी अमल भी उसके साथ मैच कर रहा हो और आपके लफ्ज भी उसके साथ मैच कर रहे हो।
1: सर खुशबख्त आपने लफ्ज बोला है,
2: हाँ,
1: तो खुशबख्ती एक एलिमेंट है,
2: हाँ, हाँ,
1: और वो लोग खुशकिस्मत होते हैं,
2: बिल्कुल,
1: जो ये यू नो खुशबख्ती एक बड़ी खुशकिस्मती की अलामत है, बड़ी एक अलग ही कैफियत है। तो इसको थोड़ा सा इस कैफियत को बयान भी कीजिए और खुशबख्ती अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में किस तरह लाई जाए।
2: देखो बर्नार्ड शॉ की एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन मेरे जहन में आ रही है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था जहाँ पर आपके फर्ज मनसबी जो आपकी ड्यूटीज हैं वो और जो आपकी ख्वाहिश कल्बी है, वो दो लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो आपकी ख्वाहिश कल्बी जो आपका पैशन और आपका प्रोफेशन जहाँ पे मिल जाता है,
1: दोनों चीजों का मिलाप जहाँ पे होता
2: है और प्रोफेशन जहाँ पे मिल जाता है उसको खुशबख्ती कहते हैं। फिर आपके पास करने को कख नहीं होता, आप तो वो कर रहे थे जो आपका पैशन था और वही फिर आपका पैशन बन जाता है और वही आपका फिर प्रोफेशन बन जाता है और वहीं से पैसा भी मिल रहा है, सुकून भी मिल रहा है और जिंदगी में आसूदगी भी आ रही है। तो ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इकबाल का एक बड़ा शेर
1: कि
2: परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, शाही का जहां और करगस का जहां और। करगस जो होता है वो मुर्दार खोर होता है, वो हमेशा मुर्दा की तरफ लपकता है, किसी के किए हुए शिकार को खाना पसंद करता है।
1: शाहीन जो
2: एक
1: है
2: तरफ जो शाहीन है उसके गिर्दो नवाह में हजार मुर्दार पड़े हों वो देखे कभी नहीं, उसकी फितरत में ये है कि वो शिकार करके खाएगा। परवाज दोनों की बुलंदी पे है,
1: बिल्कुल।
2: अब वो लोग जो कहते हैं मेरे बाप ने बड़ा कमाया हुआ है, शिकार बाप ने किया था ना तो मैं इसी पे अपनी जिंदगी गुजारता हूँ, वो कहाँ फॉल करते हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि बाप ने जो काम की मेहनत करनी थी उन्होंने कमा लिया, अब मैंने अपना शिकार जिंदगी में खुद करना है, वो शाहीन है, जिसको इकबाल भी कहता है कि शाहीन कहीं अपना आशियाना नहीं बनाते हैं, शाहीन हमेशा बुलंद परवाज होते हैं, शाहीन हमेशा जो है वो किसी और के किए हुए शिकार के ऊपर इक्तफा नहीं करते हैं। तो वो तालिब इल्म जो जिंदगी के अंदर ये चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं वो कामयाब हो जाएं, तो उनको ये चाहिए कि अपनी जिस कितार में किस में आप खड़े हैं, आप शाहीन बनना चाहते हैं या करगस बनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की हैं। और इसमें अगर हम एक चीज थोड़ी सी और भी ऐड कर लें कि कुछ लोग क्या करते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज में भी होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स की बात हो रही थी ना, तो हम लोग, ये गलती तो है सर कि हम एक दूसरे को डिमोरलाइज बहुत करते हैं, क्वेश्चन कर दिया है, या आप एक बच्चे को आदत है वो सवालात ज्यादा करता है क्लास में या करती है, तो उसका मजाक बनाना, खुद वो नहीं कर रहे होते क्वेश्चन, लेकिन हर किसी की एक डिफरेंट एक मिजाज है कि वो किस तरह चीज को समझना और उसको कैचअप करना। तो अब एक स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन करता है टीचर से, तो या कोई स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ द वे जाके जो है वो क्लास में क्वेश्चन करने वाला लड़का है या लड़की है जिसमें टैलेंट भी है, जिसमें स्किल भी है, वो डिमोरलाइज हो जाता है, फिर वो क्वेश्चंस करना बंद हो जाता है और वो एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि यार मायूसी की तरफ चला जाता है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैसेज देना सर जो हूट करते हैं।
2: बिल्कुल, अब ये जो है ना, मैं हमेशा चर्चिल का एक बड़ा खूबसूरत कोटेशन है, वो ये कहता है कि काफले चलते रहते हैं और जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं। जिन्होंने आगे बढ़ना होता है ना, वो कभी भी छोटी छोटी बातों के ऊपर कान नहीं धरते हैं। लंबी जब आपकी मंजिल इतनी बड़ी है, तो छोटे छोटे मोड़ों के ऊपर होने वाले छोटे छोटे हादसे आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। अगर वो बच्चा यूं कहता है कि अच्छा मैं डिमोरलाइज हो रहा हूँ बच्चों की हुटंग से, ये चीज आप देखो, यूनिवर्सिटी में आने का मकसद ही ये था कि आपको ये इन्वायरमेंट मिलना है, वरना प्राइवेट भी कर लो डिग्री। यूनिवर्सिटीज जहां आपको फॉर्मली एजुकेट करती हैं, इनफॉर्मल एजुकेट भी करती हैं। इनफॉर्मल एजुकेट के 50 बच्चों की क्लास है फॉर एग्जांपल, अब उसमें हर कल्चर का, हर बैकग्राउंड का बच्चा बैठा हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: अब उसके अंदर एडजस्टमेंट आपको, ये इनफॉर्मली वो बच्चा एडजस्टमेंट भी सीख रहा है, इनफॉर्मल वो जो बच्चा है वो क्लास के साथ अडेप्टेबिलिटी भी सीख रहा है। तो जो मुताबकत होती है वो पैदा करना पड़ती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम ये कहें कि एक जो बच्चा है वो हूटिंग से डीमोरलाइज हो गया।
1: बिल्कुल,
2: ये वाकईतन जो बच्चे हूट करते हैं, अब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो हूट करते हैं और पूरी उम्र 10 साल के बाद भी वो कहीं बैठ के हूट ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो हूट हो रहे होते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो कभी भी जिंदगी के अंदर दूसरों की बातों को इस हद तक संजीदा मत लीजिए कि वो आपकी मंजिल में पहुंचने के रास्ते में हायल हो जाए।
1: माशाल्लाह, जबरदस्त सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें समअप किया और हमने कोशिश की है कि आज हम लिसनर्स को जो तालीम की फादियत के ऊपर और तालीमी निजाम के ऊपर और क्या क्या चीजें जो है उसमें हम मोटिवेट अपने आप को किस तरह कर सकते हैं, डिमोरलाइजेशन से किस तरह दूर हो सकते हैं, तो हमने जो है आप तक अपना मैसेज पहुंचाया है सर इरफान अली फानी से, बड़ी खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमें नेक्स्ट शो तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ब्रांड की वफादारी खरीदार के जज्बात से भरपूर फैसले की अक्कासी होती है। वो एक ही ब्रांड से जुड़ा रहने के लिए बार बार उस ब्रांड से अशिया खरीदने का हामी होता है। उसका पसंदीदा ब्रांड उसकी ख्वाहिशात और तवक्कोआत पर पूरा उतरता है, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर का पसंदीदा ब्रांड बन जाता है। खरीदारी का ये रवैया शऊरी और लाशऊरी दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह रवैया एतमाद की बुनियाद पर कायम होता है। एतमाद इन तवक्कोआत का जो खरीदार की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक होंगी। ब्रांड के वफादार लोग अपने पसंदीदा ब्रांड की अदम मौजूदगी में मुतबादिल ब्रांड से किसी भी किस्म की खरीदारी से इजतनाब करते हैं। ये लोग मुख्तलिफ स्टोर्स पर अपने पसंदीदा ब्रांड्स की तलाश में चक्कर लगाते हैं और ज़्यादातर इसकी अदम मौजूदगी में ख़रीदारी का इरादा ही तर्क कर देते हैं। इसकी बड़ी वजह एहसासात और जज्बात की शमूलियत है जो कि ब्रांड और ख़रीदार के दरमियान कायम होती है।
1: ब्रांड कॉन्शियसनेस के बारे में मैं यही कहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं जो कि हमारे लोकल ब्रांड से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पैसे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और जो है ड्यूरेबल होते हैं। आप जो हैं वो इन्हें जो है वो इन कंपेयर टू लोकल ब्रांड उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो।
0: ख़रीदार के ख्याल में ब्रांड ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि एहसासाती ज़रूरियात की अदायगी अंदाज में करता है कि एक जज्बाती सा रिश्ता मुंसलिक हो जाता है। एक ही ब्रांड से ख़रीदारी अपनाइत के जज्बे को फ़रोग देती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के नज़दीक टूथपेस्ट की ख़रीदारी दांतों की सफाई की यकीन दहानी करती है, और उसके बरक्स पसंदीदा ब्रांड से ख़रीदारी ना कर सकने पर ख़रीदार खौफ और आसन अजाब के जज्बात को उभारता है। ये वो एहसासाती रिश्ता है जो ब्रांड की बार बार ख़रीदारी और ब्रांड से वफादारी को एक दूसरे से जुदा बताता है। अगर आपके पसंदीदा ब्रांड की फ्राहमी मुमकिन नहीं तो क्या आप बग़ैर किसी फ़िक्र के दूसरे ब्रांड से ख़रीदारी कर लेंगे? आपके दिमाग में घूमने वाले जवाब इस बात की अक्कासी करते हैं कि आया आपसे जुड़े तमाम जज्बात आपको अपने ब्रांड से मुतल्लिक ख्यालात से आशना करा देंगे। इंसान का ताल्लुक चीज़ों से जल्द कायम हो जाता है, जिसकी बुनियादी वजह उसमें एहसासात, ख्वाहिशात, जज्बात, उमंगों और उम्मीदों की मौजूदगी है। इंसान जज्बात और एहसासात में बहकर इंतहाई कदम भी उठा लेता है। यही वजह है कि उसका लगाव और एहसासात से रिश्ता खासा गहरा है। इंसानी फितरत है कि हर कोई मुनफरिद नजर आना चाहता है। ज़ाहिरी सरापा बेहतर से बेहतर बनाने की ख्वाहिश हर एक के अंदर मौजूद होती है। इसी फितरत और ख्वाहिश की तस्कीन के लिए आला लिबास, मुनफरिद अशिया और दूसरों से मुमताज़ चीज़ों का हसूल ज़रूरी समझा जाता है। ज़िंदगी में हर शख्स कोई ना कोई मेयार मुकर्रर करता है। मार्केट में खास ब्रांड्स की मौजूदगी ने इस मसले को हल कर दिया है कि बेहतर अशिया की तलाश में लोग मारे मारे फिरते हैं और अपनी स्वाबदीद से अच्छी समझी जाने वाली चीज़ को हासिल करते हैं। इस बात का पूरा एहतमाल हो सकता है कि वो चीज़ आला मियार की ना हो। ब्रांड्स की मौजूदगी ने ना सिर्फ ये मसला हल कर दिया है बल्कि कारोबारी मुकाबले की वजह से आला मियार की चीज़ें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं।
2: ब्रांड कॉन्शियसनेस एक काफ़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए, और ब्रांडेड चीज़ जो कि मैं पहनता हूँ वो कैप से लेके जूते तक मेरे ख्याल से मैं सारी चीज़ें ब्रांडेड पहनता हूँ, और मुझे जो लोकल चीज़ें वो बिल्कुल अच्छी लगती है। और मैं जो भी ये देखते हैं जैसे चीज़ें लोग जो लेने जाते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ब्रांडेड चीज़ें लिया करें क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और पहनने को काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरे भी जब तारीफ़ करते हैं पूछते हैं आपसे कि क्या चीज़ पहनी है, क्या कहाँ से ख़रीदी है, तो लोकल चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये पैसे ना देखें, देखें क्वालिटी कैसी है, उनका जो एटमॉस्फेयर आपको यानी कि ये शॉप्स में मिलता है। बस
0: जदीद माशरा और इसके अफराद इस सेहतमंदाना मुकाबले से बखूबी फ़ायदा उठाते हैं और मियार पर कोई समझौता नहीं करते। सेहतमंदाना मुसाबगत माशरे के लिए बेहद मुफीद होती है, और यही फ़ायदा आला दर्जे की चीज़ों से एक से ज़्यादा ब्रांड्स की मौजूदगी से होता है। मौजूदा तनाजिर में जबकि शॉपिंग करना एक आर्ट बन गया है, मियारी ब्रांड्स की मौजूदगी इसे आसान, सादा और दिलचस्प बना देती है। इंसानी फितरत वाज़े तौर पर मुख्तलिफ और ख्याल लोगों की मौजूदगी की अक्कासी करती है। मोटा छोटा पहनने और इंतहाई सादा खाने वालों के मुकाबले में ऐसे लोग वाफर तादाद में मौजूद नहीं हैं। ऐसे लोग ब्रांड के हवाले से बहुत मोहतात होते हैं और मियार की चीज़ें खरीदने के ख्वाहां होते हैं। इससे इनकी शख्सियत को चार चांद लगते हैं और वो मुनफरिद नज़र आते हैं। ऐसे लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स के मियार और कीमत से आगाह होते हैं और फिर वो इनमें तकाबल करने की हालत में भी होते हैं। आम बुरका या निकाब जो किसी मामूली दर्जी से बनवाए गए हों उस अबाया और हिजाब के सामने बेहैसियत नजर आएंगे जो कि ब्रांडेड होंगे, चाहे उनमें स्टफ का कोई खास फर्क ना हो।
1: برینڈ کانشیسنیس اچھی چیز ہے اور مجھے تو اس پہ بہت فائدہ ہوا کیونکہ میں نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ابایا خریدا تھا جس سے بہت وہ کمفرٹیبل بھی تھا اور کافی لانگ لاسٹنگ تھا اور اس کا اسٹف بھی بہت اچھا تھا اور میں تو ہمیشہ برینڈیڈ چیزیں ہی خریدتی ہوں۔
0: برینڈس کی موجودگی نے معیار کو یقینی بنایا ہے اور لوگوں کی طرز زندگی میں بہت بہتری دیکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم میں چیزوں کی دستیابی قطعی طور پر اس طرح سے ممکن نہیں تھی، نہ ہی وہ اعلیٰ معیار کی اور پائیدار تھیں۔ دور جدید کی ٹیکنالوجی سے انسان کو چیزوں کے معیار کے حوالے سے بے فکر کر دیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز آج کل اس قدر مہارت اور ٹیکنیک سے تیار کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی معلوم نہیں ہوتی۔ دور حاضر میں جہاں فیشن نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے، وہاں برانڈز کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ان برانڈز کے معیار کو مزید نکھارا جائے تاکہ فیشن انڈسٹری دنیا کے افق پر روشن ستارہ بن کے ابھرے۔
3: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.

0: अशरफ फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो एक अहद है, एक दौर है पूरा।
1: 20वीं सदी के आखिरी हिस्से को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़ने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ का जादू किसी की रूह पर असरअंदाज होने के लिए किसी मखसूस ज़बान का मोहताज नहीं। साज और आवाज़ से नुसरत की रूह और दिल की हम आहंगी के बायस सुनने वाले उनकी आवाज़ के सहर में खो जाया करते थे।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मुशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन ग़िज़ा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।